चंदो आत्मा और सहकारियों के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना।

वाणी जयराम के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन राग नट भैरव. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित शुभंकर बंदोपाध्याय. राग नट भैरव संतूर पर कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ संतूर रिसाइटल इन राग नट भैरव. आवर आर्टिस्ट पंडित तरुण भट्टाचार्य. Accompanying on the tabla, Pandit Shubhankar Bandopadhyay. Now, listen to a Santur recital in Ragnat Bhairab by Pandit Tarun Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन सुन रहे थे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित शुभंकर बंद्योपाध्याय। ये है रागम चौबीसों घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं राग अहिरी में अमलान दत्तों का सरोद वादन। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संजीत मुखोपाध्याय। राग अहिरी सरोद पर कलाकार अमलान दत्तो।
1: यू वर लिसनिंग टू संतूर रिसाइटल इन राग नट भैरव बाय पंडित तरुण भट्टाचार्य एकम्पानिंग ऑन द तबला पंडित शुभंकर बंदोपाध्याय। दिस इज रागम 24/7 ऑन डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कॉन्टिन्यूइंग द कॉन्सर्ट We now present a sarod recital in Rag Ahiri. Our next artist, Amlan Datta. Accompanying on the tabla, Sanjit Mukhopadhyay. Now, listen to a sarod recital in Rag Ahiri by Amlan Datta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिरी में अम्लान दत्तो का सरोद वादन सुन रहे थे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संजीत मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू सरोद रिसाइटल इन राग अहिरी बाय अम्लान दत्ता। Accompanying on the tabla, Sanjit Mukhopadhyay. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं तबला वादन, कलाकार है मुकेश जाधव। प्रारंभ में आपने तबले पर प्रस्तुत किया ताल, तीन ताल सुनते हैं। आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुरकर।

घिना धार धा घेड़े नग तेरे किट घिना धार धा घेड़े नग तेरे किट घिना धार धा तेरे किट घिना धार धा तेरे किट घेड़े नग तेरे किट केड़े नग तेरे किट तक तेरे केड़े नग तक तेरे किट तेरे किट तेरे किट घिना धार धा तेरे किट घिना धार धा तेरे किट घेड़े

अभी आपने सुना तबले पर ताल तीन तार, और अब सुनते हैं तबले पर ताल छपताल, कलाकार मुकेश जाधव। आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुरकर।

श्रोताओ, अभी आपने सुना तबले पर ताल छपताल। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मुकेश जाधव द्वारा प्रस्तुत तबले पर ताल एक ताल। आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुरकर।

अभी आपने सुना तबले पर ताल एक ताल। कलाकार थे मुकेश जाधव। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे उदय शाहपुरकर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital by Sunira Kasliwal. She is accompanied on the tabla by Haseen Ahmad Khan. You will first listen to Rag Nat Bhairav, in which you will hear Alap, Jod and Jhala, followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव सुनीरा कासलीवाल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग in which you will hear the alap followed by vilambit and drutgat set to teen tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। प्रारंभ में सुनते हैं राजेंद्र कांदळगावकर द्वारा प्रस्तुत राग वृंदावनी सारंग। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है चरण शरण गोपाल, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है जाऊ मैं तोते बलिहारी। साथ संगत तबला माधव मोड़क, हारमोनियम राजीव परांजपे। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कांदळगावकर द्वारा प्रस्तुत राग वृंदावनी सारंग।

हारमोनियम पर संगति कर रहे थे राजीव परांजपे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विजय सरदेशमुख द्वारा प्रस्तुत राग शुद्ध कल्याण। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है बोल न लागी और मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बतिया दुरावत है। साथ संगत हारमोनियम प्रमोद इनामदार, तबला विठल क्षीरसागर। तो आइए सुनते हैं विजय सरदेशमुख द्वारा प्रस्तुत राग शुद्ध कल्याण।

श्रोताओ, अभी आपने सुना विजय सरदेशमुख द्वारा प्रस्तुत राग शुद्ध कल्याण। आपके साथ हारमोनियम पर थे प्रमोद इनामदार, तबले पर थे विठल क्षीरसागर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग किरवानी और राग पीलू में गिटार वादन. आज के कलाकार हैं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समर साहा. पंडित देवाशीष भट्टाचार्य अपने गिटार वादन की शुरुआत राग किरवानी से कर रहे हैं. तो आइए सुनते हैं राग किरवानी में गिटार वादन. कलाकार पंडित देवाशीष भट्टाचार्य.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ गिटार रिसाइटल इन राग किरवानी followed by Raag Pilu. Our artist this evening, Pandit Devashish Bhattacharya, accompanying on the tabla, Samar Saha. Now, listen to a guitar recital in Raag Kirwani, followed by Raag Pilu by our artist, Pandit Devashish Bhattacharya.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग किरवानी में गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समर साहा। पंडित देवाशीष भट्टाचार्य अपने गिटार वादन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग पीलू में गिटार वादन। तो आइए सुनते हैं राग पीलू में गिटार वादन, कलाकार पंडित देवाशीष भट्टाचार्य।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग पीलू में गिटार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समर साहा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन।

0: DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ गिटार रिसाइटल इन राग किरवानी फॉलोड बाय राग पीलू बाय आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग पंडित देवाशीष भट्टाचार्य एकम्पानिंग ऑन द तबला समर साहा। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं सितार वादन। कलाकार है सहाना बैनर्जी। आपने सितार पर प्रस्तुत किया राग बिलास खनी तोड़ी सुनते हैं। आपके साथ तबले पर है रविन्द्र कुमार शर्मा। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग बिलास खनी तोड़ी, कलाकार सहाना बैनर्जी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार पर राघछिन सोटी, कलाकार थी सहाना बैनर्जी। आपके साथ तबले पर थे रामदास परसुले। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का बांसुरी वादन. सर्वप्रथम आप सुनेंगे इन्हीं की बजाय बांसुरी पर राग गुर्जरी तोड़ी में धुन. मध्य लय रूपक तथा द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित रविनाथ मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई राग गुर्जरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। आइए सुनते हैं इन्हीं का बांसुरी पर बजाया राग मेघ।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाया राग मेघ। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव अपने कार्यक्रम का समापन बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी से कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं काज मोरे बन आवे और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Ustad Ghulam Sadiq Khan.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग मेघ। मध्य लय झपताल में निबद्ध है। बोल हैं गर्जे घटा घन। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बैरागी बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। नाउ

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादी खां का गाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मेघ बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। ही वाज अकंपनीड बाय नवाब अली खां ऑन तबला एंड सज्जाद अहमद ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

जय श्री बथीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओंकार प्रभुघाटे से ये मराठी भक्ति रचना।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।